इन पागल दिमागों में घनी खुशियों के लच्छे हैं, हमें पागल होने दे दो, हम पागल ही अच्छे। There is a pleasure in being mad, which none but the madman knows.